0: और मैं पाचू
1: इटी यूनियो और रेडियो पियम ये करे वेर क्वारो
0: और मैं पाचू
1: इटी यूनियो और रेडियो

0: और मैं पाचू
1: इटीविनो और रेडियो यूं ये करे वेर क्वारो
0: बीमार मैं पाचू
1: इटीविनो और रेडियो

0: और मैं पाचू
1: इटीवी और रेडियो पियम ये करे वेर क्वारो
0: और मैं पाचू
1: इटीवी और रेडियो

0: और मैं पाचू
1: ईटी यूनियो और रेडियो पियम चुन के रे वेर क्वारो
0: पियम चुन के रे वेर क्वारो
1: बिमारा मैं पाचू
0: बिमारा मैं पाचू
2: यू आर लंग यू बी डू टेल आ लोका कामु पेने
1: ईटी यूनियो और रेडियो

0: मार मैं पाचो
1: इटीविनो और रेडियो पियम ये करे वेर क्वारो
0: मार मैं पाचो
1: इटीविनो और रेडियो इटीविनो और रेडियो